0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: अरे अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: उतला बोल रहे?

0: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
1: मतलब?
0: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहाँ,
1: पर हम तो सभी डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
0: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।

अभी आपने सुना गणेश आय धीमहि भजन, स्वर मैथिली ठाकुर, जोनिता गांधी, सूर्य गायत्री और आजीवासन किड्स का, गीतकार अजय अतुल, डॉक्टर चंद्रगुप्त वानिनकर और संगीत है अजय अतुल का। अब सुनिए गजल, बहुत खूबसूरत सी है, सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता, जिसे अपनी मखमली आवाज और दिलकश अंदाज में पेश किया है गजल सम्राट जगजीत सिंह ने।

कविता पेश कर रहा हूं जनाब, अमीर मिनाई की गजल है। वो बेदर्दी से सर काटे अमीर, वो बेदर्दी से सर काटे अमीर, और मैं कहूं उनसे हुजूर आहिस्ता आहिस्ता, जनाब आहिस्ता आहिस्ता। तो इस मकते में हुजूर और जनाब का जो इस्तेमाल किया शायर ने, जहां तक मेरी समझ में आया है तो मैंने उसको कोशिश की है कि आपको बताऊं कि शायर ने क्या सोचा था। हुजूर और जनाब में वही फर्क है जो पंजाब में और लखनऊ में।

आहिस्ता आहिस्ता आप अभी और भी गजलें सुनेंगे। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। अब पेश है एक बेहद खूबसूरत गजल, मैं हवा हूं कहां वतन मेरा, अमीक हनफी की कलम से निकली ये गजल। उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन की दिलकश आवाज और सुरों से सजी, तो आइए सुनते हैं।

0: रंग तरंग
1: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। अब सुनिए एक बेहद खूबसूरत गजल, गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी है। इस यादगार गजल को अपनी आवाज दी है लता मंगेशकर और जगजीत सिंह ने। इसके बोल हैं शाहिद कबीर के और संगीत से सजाया है जगजीत सिंह ने। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सी गजल।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं रंग तरंग कार्यक्रम। पेश है अगली गजल, जरा जरा सी बातें तेरी मुझको याद आती हैं। इस गीत को अपनी मधुर आवाज दी है अलका याग्निक ने। इसके खूबसूरत बोल हैं जावेद अख्तर के और इसे संगीत से सजाया है राजू सिंह ने। तो आइए सुनते हैं जरा जरा सी बातें।
1: हसीन लम्हे, शरीर लम्हे, शर्मीले लम्हे, झिझकते लम्हे, पिघलते लम्हे, धड़कते लम्हे, मोहब्बत में गुजरे ये तमाम लम्हे दिल की पगडंडियों पर अपने पैरों के निशान छोड़ गए हैं। मौसम बदलते हैं, हवाएं चलती हैं, लेकिन ये निशान न मिटते हैं

कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रंग तरंग विविध भारती से। अब सुनिए फिल्म साथ साथ की एक बेहद खूबसूरत गजल यू जिंदगी की राह में।

आइए अब सुनते हैं फिल्म डैडी की बेहद खूबसूरत गजल आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे। इस खूबसूरत गजल को अपनी आवाज दी है तलत अजीज ने, इसके बोल लिखे हैं सूरज सनीम ने और इसकी धुन बनाई है राजेश रोशन ने।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को। विविध भारती से यादों की महफिल। गूंज रही है मुबारक बेगम की आवाज केदार शर्मा के बोल, हमारी याद आएगी।

0: मुबारक बेगम की आवाज थी। फिल्म का नाम था हमारी याद आएगी।
1: याद आएगी अंधेरे छाए ही।
2: एक विलक्षण गायक।
3: अरे ओरे हे।
2: संगीत के साधक।
3: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
2: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में

0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से यादों की महफिल, एक बेमिसाल पियानो सॉन्ग।
3: आपके हसीन रुख।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स OTT, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।

0: इंदिवर की बोलती है ओपी नैयर की तरसी किशोर कुमार की आवाज। फिल्म का नाम था एक बार मुस्कुरा दो।
1: जंबो जेट लंदन मुंबई प्रवास थेट जगलो वसलो पुन्ना भेट जंबो जेट सोई।
0: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
1: रात्रंदीन आमा युद्धाचा प्रसंग।
0: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
1: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
0: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जीने की राह फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज।

0: जीने की राह फिल्म का ये गाना था। इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

साथ ही मेरे साथी फिल्म का गीत था किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें थी। आनंद बख्शी की बोल, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। इस गाने की बस एक झलक सुनवा पाएंगे, वक्त कम है। फिल्म का नाम है मोम की गुड़िया।

आइए सुने कार्यक्रम सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। सुरीला सफर कार्यक्रम में हम हर रोज एक इबारत पोस्ट करते हैं। एक टेक्स्ट होता है जो विविध भारती के फेसबुक पेज पर आता है। फेसबुक

बुक पर जाना है और लिखना है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। विविध भारती का पेज नजर आएगा, यहाँ होती है हमारी इबारत। आज की इबारत डायरी का एक अंश है, एक लड़की की डायरी का एक अंश। याद है तुम कहा करते थे, तुम सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं इकरार करूं। तब सब सच लगता था। एक सहेली ने कहा था, प्रीत की अंधियारी मंजिल में चारों ओर स्याही, हंस के उड़ा दी थी वो बात। पर फिर प्यार भी खोया मैंने, सब कुछ हार के। आज कितना उदास है सब, सब कुछ ठहरा सा, पर चलते रहे हम। गम राह में खड़े थे वो साथ हो लिए, सोचा नहीं था एक दिन पराए हो जाओगे तुम। पराए हो गए तो क्या, कभी ये भी तो थे अपने। इंसान गैरों से थोड़ी उम्मीद करता है, गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा ना हुआ। पुकारा था तुम्हें कई बार, पर खाली गई पुकार, तुमने खामोशी ओढ़ ली। खामोशियों से तो दिल और दिमाग चलते हैं। हां आंसू बहे बहुत बहे, मगर उन आंसुओं से हमने फसाने बना लिए। तुम नहीं हो, बदलते हैं मौसम, बारिश कोहरा धूप, चलती हैं हवाएं, तू नहीं तो ये रुत ये हवा क्या करूं। कभी कभी तो ये ख्याल आता है, जाने अब तुझसे मुलाकात कभी हो के ना हो, जो अधूरी रही वो बात कभी हो के ना हो। पता है इंसान की सबसे खास बात क्या है, वो हर तरह के गम को भुला देता है, बाकी रह जाती है टीस। किसको पता अब इस नगरी में कब हो तेरा आना, अब तो यही लगता है कि जमीन और आसमां हमसे दोनों खफा हैं। किसी लड़की की डायरी के ये अंश हैं और इसमें वो गाने छुपे हैं जो आज के इस कार्यक्रम में शामिल हैं। बहुत ही जज्बाती होने वाला है आज का ये कार्यक्रम, और अगर आप अपने दिल की बात फेसबुक पर कमेंट में हमें लिखते हैं तो ये कार्यक्रम जज्बात के मोती से सच जाएगा। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या कभी डायरी में आपने अपने दिल की बात लिखी, या अपने किसी दोस्त अपनी किसी सहेली से अपना दर्द उड़ेला। आज की इस इबारत को पढ़कर क्या याद आया है आपको, बताइएगा। शुरू करते हैं इस गाने के जरिए।

एक श्रोता लिखते हैं कि किसे याद करके ये गाना गाया है ये हम नहीं बता सकते। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि फिल्म ब्लैक मेल का ये बहुत ही रोमांटिक गाना है। और इसके अलावा एक श्रोता इन्होंने लिखा है कि मैंने डायरी की हर बात कॉलेज खत्म होने के कुछ दिन पहले बताई थी, जो मैंने सगाई से पहले और सगाई से शादी तक की उम्मीदें उकेरी थी और उसने पढ़ने की जिद की तो मैं मना नहीं कर पाई, आखिर मेरे हर हालात की वो जानकार थी। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि लफ्जों में मत ढूंढ अपने सपनों को, सपनों के लिए तो जमीन जरूरी है। एक और श्रोता की बात है कि इस गीत में प्रणय और श्रृंगार के कितने मधुर आयाम खुलते हैं, प्रेम की गहन ऊष्मा से सजी इस गीत में शब्दावली डायरी लिखने की उस दुनिया में ले जाती है जब उम्र में बहुत कच्चे थे और डायरी में पूरे संसार की बातें शामिल हो जाती थीं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि डायरी लिखना दरअसल खुद से बातें करना है और अपने अनकहे दर्द को कागज पर उतारने का सबसे सुकून देह जरिया है। जब शब्द कम पड़ जाते हैं तो संगीत और गीत हमारे जज्बात बन जाते हैं। कितनी प्यारी बात। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि उन्होंने अभी अभी 77 साल का सफर पूरा किया, उन्हें हम शुभकामनाएं दे रहे हैं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि डायरी के पन्ने भी अजीब होते हैं, जो बातें जबान तक नहीं आती उन्हें चुपचाप सहेज लेते हैं। कुछ स्याही में भीगी शामें, कुछ अधूरे ख्वाब, कुछ नाम, वक्त मिटता जाता है मगर पन्नों पर ठहरी यादें मिटती कहां हैं। कितनी जज्बाती बातें हमारे सारे श्रोता लिख रहे हैं। ये गाना जो अभी हमने बजाया ब्लैकमेल फिल्म का ये गाना, क्या आप बता सकते हैं कि किन कलाकारों पर ये गाना फिल्माया गया था? और इसके अलावा एक और बात आपको बतानी है कि वो कौन सा सूत्र है जो आज के सारे गानों को एक डोर में पिरो रहा है? और इसके अलावा अब जो गाना आ रहा है वो इंस्टाग्राम की इस दुनिया में रीलों का शहजादा बन गया। अचानक ही इस गाने को लेकर कितने लोगों ने रीलें बना डाली। एक गाने का जैसे पुनर्आविष्कार हो गया, जैसे कि रीडिस्कवरी हो गई इस गाने की, जैसे कि दोबारा किसी को सरे राह चलते चलते कोई अनमोल मोती मिल गया हो। इस गाने ने वही कमाल किया था। क्या आपने भी इस गाने को लेकर कोई रील बनाई थी अपने दोस्तों अपनी सहेलियों के साथ? ये भी बताइएगा कि किस फिल्म का है ये गाना और किसने लिखा है।

भाई भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहां। ये वो गाना है जो एक वक्त पर अचानक रीलों पर छा गया था, जैसे इसकी रीडिस्कवरी हुई थी। भीगा भीगा है समा, इस जुमले से मुझे लगा कि आप सभी से पूछना चाहिए कि क्या आपके शहर में भी भीगा भीगा है समा, क्या मौसम है, यादों की बारिश हो रही है या आसमान बरस रहा है, ये बताइएगा। आज के इस कार्यक्रम को किस एक थीम ने अपने सूत्र में पिरो कर रखा है, वो बात हमारे कुछ श्रोताओं ने पहचान ली कि राजेंद्र कृष्ण के लिखे हुए गाने आज के इस कार्यक्रम में शामिल हैं। और इसके अलावा नागिन फिल्म का ये गीत है, ये तमाम लोगों ने बताया। और भीगा भीगा है समा, ये जो जुमला है ये तो जैसे जहन पर छा गया है, मैंने कहा कि रीलों पर छा गया था ये गाना। एक श्रोता लिखते हैं कि अगर किसी राह पर अकेले चल रहे हैं और कोई ऐसा साथी मिल जाए तो सफर काटना सुंदर और आसान हो जाता है। सफर कई तरह के हो सकते हैं, जिंदगी का सफर, नौकरी का सफर वगैरह। आज के गाने जिंदगी के सफर में साथ निभाने वाले गाने हैं। एक श्रोता लिखते हैं, हमारे यहां झमाझम बारिश हो रही है, डायरी कभी नहीं लिखी लेकिन पढ़ाई के दौरान अपने लक्ष्यों को मैं जरूर अपनी डायरी में नोट कर लेता था, ये बात हमारे एक श्रोता ने लिखी। इसके अलावा कार्यक्रम शुरू होने से पहले कितने सारे श्रोताओं ने अपनी बातें लिखी थी। एक श्रोता लिखते हैं कि पुरानी डायरी कागज के कुछ पन्नों का संग्रह नहीं होती, वो तो हमारे बीते हुए समय की पेटी है जिसमें हम अपने जीवन के अनमोल पल सहेज कर रख लेते हैं। कभी किसी खत का अंश, कभी कोई तस्वीर, कभी किसी मुलाकात की तारीख, डायरी बहुत कुछ होती है, यादों का एक जखीरा। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि एक छोटी मगर प्यारी बात है, हम अपनी डायरी में कुछ बातें लिख जाते हैं, कुछ आंखों में रह जाती हैं और कुछ गीत बनकर हमेशा हमारे साथ चलती हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि कभी डायरी लिखते हुए लगता था ये सिर्फ मेरे शब्द हैं, लेकिन बाद में समझ में आया इन पन्नों में तो पूरी की पूरी कहानी छिपी हुई है। किसी का इंतजार, किसी की खामोशी, आंखों में ठहरे आंसू और कुछ अधूरी बातें, सब धीरे धीरे जैसे गीत बन गए हैं। न जाने कितने श्रोता हैं जो जिनके जज्बात आज जैसे जाग उठे हैं। नागिन का गाना पुराने सोने की तरह है, खालिस सोना है, ये एक श्रोता ने लिखा है। एक श्रोता लिखती है कि 13 गानों वाली फिल्म थी नागिन और एक से बढ़कर एक गाने। अपने कॉलेज के दिनों में हमने डायरी लिखी थी लेकिन अब तो सिर्फ हिसाब किताब लिखते हैं डायरी में। अरे अरे, डायरी लिखनी चाहिए भाई, हिसाब किताब से बाहर निकलिए। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद कल रात हमारे यहाँ अच्छी बारिश हुई है। एक और श्रोता है जो कहते हैं बस यादों की बारिश हो रही है, वरना सूर्य देव का प्रकोप है, बदल आते हैं, झलक दिखाते हैं और चले जाते हैं। एक और श्रोता ने बहुत ही सुंदर बात लिखी है, वो लिखते हैं कि हम तो अपनी डायरी में मोर पंख रखा करते थे। और उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत चटख धूप है हमारे शहर में। ये जो मोर पंख है, इससे मुझे एक और बात याद आ गई कि किताबों में और डायरी में दो चीजें बहुत रखी जाती थी, एक तो मोर पंख और दूसरी विद्यापति। क्या याद आया इन दोनों बातों से, जरा बताइएगा। किस फिल्म का है ये गाना, किस पर फिल्माया गया, ये सब बताइए। साथ में ये भी बताइए कि आज के इस जज्बाती कार्यक्रम के जरिए कौन सी भूली दास्तान आपको याद आ गई है। 1:16 विविध भारती, सुरीला सफर, यूनुस खान के संग।

एक श्रोता लिखती हैं कि स्कूल के टाइम में मेरी एक सखी जिसे जिसके घर में मयूर पंख रखा करते थे उसने मुझे गिफ्ट दिया था। दसवीं तक मैंने संभाल कर रखा था और मोर पंख भी हम तो जब पापा को कोई सम्मानित करता और बुके में मोर पंख आते थे तो हम स्कूल में ले जाकर सहेलियों को बांटते थे। न जाने कितनी यादें आ गईं जहन में। एक श्रोता लिखते हैं कि न तो कभी डायरी लिखी और न शायरी की है। 2011 में सेवानिवृत्त होने के बाद कोरोना काल में विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े और कई अनजाने मित्र बन गए। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि विद्यापति की याद दिला दी। विद्यापति और बचपन आपस में जुड़े हुए हैं। घर में गमले में भी विद्यापति लगती थी, कॉपियों में रखा करते थे और कहते थे कि इससे पढ़ाई अच्छी होती है, विद्या बढ़ती है। कमाल की बात थी, कमाल का वक्त था। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि इतने अच्छे गाने आप पेश कर रहे हैं कि हमारा जो सोने का इरादा था वो हमने टाल दिया है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बहुत ही सटीक विषय आपने डायरी का रखा है और जो गाने हैं वो बहुत ही जज्बाती हैं। एक श्रोता और हैं कहती हैं कि हम अपने कॉपी में मोरपंख के साथ चौक का पाउडर रखा करते थे क्योंकि हमें लगता था कि चौक का पाउडर रखने से मोरपंख बड़े हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। अनिता गुहा, प्रदीप कुमार, पुरानी फिल्म संजोग, एक श्रोता की बात। और इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि विद्या के पेड़ की पत्तियां बहुत रखते थे किताबों में क्योंकि हमें यह बताया गया था कि इससे विद्या आती है। एक श्रोता लिखते हैं कि हम अपनी नोटबुक में भगवान की तस्वीरें रखा करते थे। एक और श्रोता है जो कॉपी में विद्या की पत्तियां और रंग बिरंगे पंख रखा करते थे। एक और श्रोता है जो कहती हैं कि हम तो अपने मन की सारी बातें सिर्फ भगवान जी से

करते हैं हर समय। आज के कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी गाने बहुत अच्छे हैं और देखते हैं कि वो चुप रहें तो मेरे दिल के दाग जलते हैं गाना आज शामिल होता है कि नहीं। एक और श्रोता है जिनका कहना है कोई जीवन से चला जाए तो कितने दिन विश्वास नहीं होता कि अब वो नजर नहीं आएगा। ये गीत न जाने कितनी पुरानी यादों में डुबोकर आंखों को सजल कर देता है। वो भूली दास्तां और डायरी दोनों ही गुजरे वक्त की खामोश सहेलियां हैं। डायरी के पन्ने पलटते ही कोई भूली शाम, कोई अधूरा खत, कोई पुराना गीत, किसी की आवाज अचानक यादों में लौट आती है। कुछ दास्तानें जिंदगी से मिट जाती हैं मगर डायरी के पन्नों पर उनका मौसम हमेशा ठहरा रहता है। एक और श्रोता लिखते हैं, जब मैं इंटरमीडिएट का छात्र था तो मैंने कुछ दिन तक डायरी लिखी थी लेकिन फिर बंद कर दिया हमेशा के लिए, क्योंकि जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जिन्हें हम कभी याद नहीं करना चाहते। चलिए आगे बढ़ते हैं इस गाने की तरफ। फिल्म का नाम तो बताइएगा ही, साथ में ये भी बताइएगा कि नींद कहाँ और आराम कहाँ, ये जुमला आपकी जिंदगी पर कितना फिट होता है। कितनी नींद लेते हैं आप, कितनी नींद ले पाते हैं, कितने घंटों की नींद।

जेलर फिल्म का ये गाना है, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बताया। और एक श्रोता ये लिखते हैं कि हम प्यार में चलने वालों को ये गाना सुनकर मन अवसाद से घिरने लगता है, लता जी की आवाज सीधे दिल में जाकर हॉन्ट करती है। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि अमेरिका में सिएटल में मैं ये कार्यक्रम सुन रहा हूं, बहुत बहुत शुक्रिया परदेश में विविध भारती से जुड़े रहने के लिए। एक और श्रोता है जो कहती है कि भाई 5-6 घंटे से ज्यादा की नींद तो हमारी पूरी नहीं हो पाती है। इसके अलावा एक और श्रोता 7-8 घंटे की नींद लेते हैं। कुछ और श्रोताओं ने भी अपनी नींद का हिसाब किताब बताया होगा। एक श्रोता है जो लिखती है कि गानों की मैंने एक अलग सी डायरी बनाई है और उसमें सारे गानों की डिटेल्स, गायक, गायिका, फिल्म का नाम, संगीतकार का नाम, ये सब लिखा करती थी। ये क्लास 12th की बात है। मेरी सहेली ने कुछ गीत मांगे, वो डायरी में स्कूल लेकर चली गई और सहेली के संग उन गानों को लिखने और बोलने में इतनी मस्त हो गई कि

क्लास टीचर आ गई, ध्यान ही नहीं रहा। उन्होंने मुझे डांटा और डायरी अपने पास रख ली। वो डायरी मुझे कभी वापस नहीं मिली। आज आपने मेरी एक दुखती रग को छेड़ दिया है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि 7 घंटे की नींद लेने के बाद शरीर कहता है भैया पड़े रहो नहीं तो पटक देंगे। हा, हा। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि भाई आपका चाय गीत रात 10 बजे आता है और वो मेरी नींद का समय होता है। 70 का दशक था, डायरी की बातें आपने छेड़ दी। एक से बढ़कर एक फिल्में आ रही थी, तब उनके गाने डायरी में लिखा करते थे। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि डायरी तो डायरी होती है, कुछ लोग संस्मरण लिखते हैं, कुछ अनुभव। मेरी माताजी और श्रीमती जी टीचर रही हैं तो स्कूल में उन्हें डायरी लिखना अनिवार्य था। बच्चों के कामकाज का हिसाब किताब उसमें होता था। ये लिखते हैं कि अपने महीने का हिसाब किताब डायरी में नोट करते हैं और गुजरे जमाने में जो चीजों के दाम थे वो देखकर आज चीजों के दाम की जब वो तुलना करते हैं तो उन्हें बड़ी हैरत होती है कि वक्त कितना बदल गया। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि कभी कभी कोई गीत के आप सुनते नहीं बल्कि वो आपके भीतर घटित होता है और मन के भीतर एक बयाबान महसूस होता है। एक और श्रोता कहते हैं कि 6 से 7 घंटे सोता हूं, सुबह 5 से 8 मॉर्निंग वॉक करता हूं। उन्होंने पूरा हिसाब लिखा है, मतलब बढ़िया नींद कई लोग लेते हैं। आज का जमाना वो है जब बहुत सारी रिसर्च भी ये बताती चली जा रही हैं कि लोगों की नींद कम हो रही है। क्या आपको लगता है कि लोगों की नींद कम हो रही है? और ये जो ब्लू स्क्रीन है, यानी जो मोबाइल लैपटॉप टेलीविजन वगैरह की स्क्रीन है, इसने हमारी जिंदगी का सुकून और हमारी जिंदगी के कीमती पल हाईजैक कर लिए हैं। किस फिल्म का है ये गाना ये बताइएगा। और ये भी कि ब्लू स्क्रीन का प्रकोप कितना है आपके जीवन में।

आवाज से आप कितना प्यार करते हैं ये भी बताइएगा। एक श्रोता लिखते हैं कि मैं बर्लिन में इस कार्यक्रम का आनंद ले रही हूं, यहां ठंड शुरू हो गई है, सुबह के 10 बजे हैं और धूप में बैठकर कार्यक्रम का आनंद ले रही हूं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि अब तो टीवी से दूर ही रहते हैं, चश्मे तो पहले से चढ़े हैं, अब मोबाइल भी बस सुरीला खेलने के बाद रख देते हैं। एक और श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि मैंने भगवद गीता क्विज में हिस्सा लिया था और मुझे एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिला था और एक सुंदर सी डायरी मिली थी जो उनके पास अभी तक है। एक श्रोता हैं जिनकी बेटी जब से बाहर पढ़ाई के लिए गई है तब से उनकी नींद गायब हो गई है। एक और श्रोता हैं जिन्होंने अपनी डायरी में 300 से ज्यादा गाने लिख रखे हैं, पूरे गानों के बोल हैं। तलत की आवाज के बारे में ये शोधा कहती हैं कि मिष्टी मधुर गीत के गायक तलत जी हैं, प्यार करना कोई बड़ी बात नहीं, ये सबको हो जाता है, उसे निभा ले जाना बहुत बड़ी बात है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि पढ़ाई के समय में मैं विविध भारती को मध्यम आवाज में सुना करता था, जब कोई पसंदीदा गीत आता था उसे रफ कॉपी में लिख लेता था और उसे जमा कर लेता था, शाम को खेतों पर पगडंडियों पर चलते हुए उस गाने को गुनगुनाता था। इस तरह से मुझे बहुत सारे गाने याद हो गए हैं। कुछ श्रोता हैं जो सलील चौधरी को याद कर रहे हैं। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि लकड़ी का पेन बनाकर इंक से लिखा करते थे, आजकल तो प्रोफेशनल पेन से लिखने का चलन हो गया। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि 1974 से 1982 तक का वक्त कॉलेज के सफर का आईना है और इन डायरियों में आर्थिक दुर्दिनों का जिक्र भी है और कुछ दर्द दिल भी। एक श्रोता हैं जो 5 घंटे सोते हैं और 11 बजे तक तो रेडियो सुनते रहते हैं रात में। इसके लिए एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हम तो भाई अच्छी नींद लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि अच्छी सेहत के लिए 7 घंटे की नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि दोपहर को आधे घंटे की नींद बहुत होती है तो मैं दोपहर को एक नैप लेता हूं, इससे ज्यादा नींद नुकसान कर सकती है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि मैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से लिख रहा हूं, राजमिस्त्री का काम करता हूं, रात 10 बजे सोना होता है, सुबह 4:30 बजे मैं जाग जाता हूं। और इस तरह से बहुत सारे श्रोताओं ने ये बातें लिखी हैं और इससे ये साबित हो रहा है कि ज्यादातर श्रोता जो हैं वो जरूरत से कम समय सोते हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत अलग अलग माध्यम, बहुत अलग अलग कारण हैं जिन्होंने हमारी नींद को हाईजेक कर लिया है, हमारी नींद को अगवा कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस जज्बाती कार्यक्रम का अगला गाना आपके लिए पेश कर रहे हैं और साथ में ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि 3 अक्टूबर को विविध भारती अपनी यात्रा के 70 बरस पूरे कर रहा है, आप सभी को कितना इंतजार है इस दिन का और 3 अक्टूबर को आप विविध भारती से क्या अपेक्षा कर रहे हैं।

एक श्रोता लिखते हैं, गम राह में खड़े थे साथ हो लिए। गम जिंदगी के साथी तो होते ही हैं। आप सभी जब जिंदगी में उदासी के, परेशानी के, गम के दिन आते हैं तो उन दिनों को किस तरह से गुजारते हैं, अपने आप को किस तरह से थामे रखते हैं, ये जरूर बताइएगा और अपनी जिंदगी के अनुभवों के जरिए बताइएगा। एक श्रोता लिखते हैं, कितने नायाब गीतों के रचयिता राजेंद्र कृष्ण हैं। मैं हमेशा ही ये कहता हूं कि गीतकारों को बहुत सलाम करने की जरूरत है जिन्होंने ये नायाब नगीने हमें दिए हैं जो हमारी जिंदगी के कदम कदम पर हमारा साथ निभाते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि 3 अक्टूबर को विविध भारती अपनी यात्रा के 70 वर्ष पूरे कर रही है। बहुत बहुत बधाई। आप सब लोग जिस तरह से विविध भारती के कार्यक्रम बनाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं और हम चाहते हैं कि 3 तारीख को भी आप ऐसे ही मनपसंद कार्यक्रम पेश कीजिएगा। बिल्कुल, ये तो जरूर होगा। और इसके अलावा ये एक श्रोता है जो कहते हैं कि डायरी के पन्ने आपके व्यक्तित्व को दिखाते हैं और डायरी लिखने का शौक पुराना है, यादों को सहेजने का सबसे अच्छा जरिया है डायरी। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आज डायरी के ऐसे पन्ने को खोला जाएगा जिनकी खुशबू हमारे दिल के किसी कोने में आज भी महक रही है। करीब 35 साल पहले की बात है, मुझे डायरी लिखने का शौक था। तब पसंदीदा गीतों के अलावा मैं व्यंजनों की रेसिपीज भी अपनी डायरी में लिखा करती थी और ये डायरी आज तक मेरे पास मौजूद है। कितनी प्यारी बात है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि 3 अक्टूबर को विविध भारती से ये अपेक्षा है कि वो एक ऐसा तोहफा दें जिससे कार्यक्रम रात 12 बजे तक जारी रहे। विविध भारती के कार्यक्रम रेडियो पर 11 बजे समाप्त हो जाते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है। भाई, आपको हम ये सुझाव देंगे कि आप एक काम कर सकते हैं और वो काम है ऐप पर सुनना। न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन के जरिए दुनिया के कोने कोने में विविध भारती सुनाई देती है बिल्कुल 24 घंटे बिना किसी बाधा के। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये गाना सुनते हैं। किस फिल्म का है ये गाना और किस तरह के जज्बात जगाता है बताइए।

एक श्रोता ये लिखती हैं कि विविध भारती पर बजने वाले गाने दिल को छू लेने वाले होते हैं और मैं अपने दुख कम करने के लिए विविध भारती के कार्यक्रम सुनती हूं और इन कार्यक्रमों को सुनकर मैं रिलैक्स हो जाती हूं। एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि इस गाने को सुनकर वो बहुत ही जज्बाती हो गई। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि विविध भारती अपनी यात्रा के 70 बरस 3 तारीख को पूरे करेगी और वे अपनी यात्रा के 70 बरस अगले बरस पूरे करेंगी। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि नींद का मामला तो बहुत गड़बड़ है, चाहे दोपहर की नींद हो या रात की नींद, जब लोगों के उठने का टाइम होता है तब हम सोते हैं और 3 अक्टूबर को बहुत ही दिलचस्प कार्यक्रमों का इंतजार हम कर रहे हैं, ये हमारे एक श्रोता ने लिखा है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि 3 अक्टूबर को सुरीला सफर कार्यक्रम पूरे 3 घंटे का होना चाहिए, क्या बात है भाई, क्या डिमांड की है आपने। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि राजेंद्र कृष्ण और मदन मोहन के जो गाने हैं वो दिल को छू लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही नायाब अलबेला गाना हम आपको सुना रहे हैं और साथ में ये भी बात कि क्या पहले के जमाने में आप डायरी लिखा करते थे और अगर डायरी लिखने का ये सिलसिला आप छूट गया है तो वो कौन सी वजह है कि आप आज के जमाने में डायरी नहीं लिखते, वो कौन सी बातें हैं जो आज आपको डायरी लिखने के शौक को आगे बढ़ाने से रोकती हैं। और हाँ, सुबह से आपके होंठों पर कौन सा गीत सजा हुआ है ये भी बताइए।

चंपा खली फिल्म का ये गाना कितना बेमिसाल है। एक श्रोता लिखते हैं कि थाईलैंड सिंगापुर मलेशिया की यात्रा पर गया था, तब भी पूरे समय में विविध भारती सुनते रहता था। एक और श्रोता लिखते हैं कि चल उड़ जा रहे पंछी मेरे जीवन का अटूट हिस्सा है, मेरे बचपन का शहर इटावा उसका छूटना, ये गाना सब कुछ याद दिला देता है। एक और श्रोता है जिन्होंने अपने पिताजी को याद किया है, उन्होंने लिखा है कि जब पिताजी नहीं रहे तो एक अंकल थे जो पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने ये गाना शोक सभा में गाया था, पिताजी को यह बहुत पसंद था। आज उन अंकल की भी याद आ गई, आज वो भी इस दुनिया में नहीं है। कितनी यादें आपने इस गाने के जरिए ताजा कर दी। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि ये गीत छुप गया कोई रे राग झिंझोटी और खमाज के पुट के साथ तैयार किया गया। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आज के जमाने में वो डायरी इसलिए नहीं लिखती क्योंकि अब लिखने जैसा कुछ बचा नहीं है जीवन में। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि डायरी लिखना चाहिए क्योंकि इससे पुराना जमाना हमेशा याद आता रहता है। हालांकि कभी कभी डायरी जीवन की मुसीबत बन जाती है क्योंकि इसमें आपके राज छिपे हुए होते हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहती है कि मेरी माँ चंपा कली फिल्म का ये गाना गाया करती थी, आपने उनकी याद दिला दी। सुचित्रा सेन के बारे में भी बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी बात कही है। और देखिए कि अब अकेलेपन का उदासी का टूटन का ये गाना आ रहा है मोहम्मद रफी की आवाज में। जिंदगी में जब अकेलेपन और उदासी के पल आए तो खुद को कैसे संभाला आपने? वो कौन लोग थे जिन्होंने आपको सहारा दिया, आपको संबल दिया? जिंदगी में निराशा का सामना आप कैसे करते हैं?

उसके बाद रेडियो और बाद में कुछ अच्छे लोगों ने साथ दिया, तो कभी हार नहीं माननी पड़ी। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि संघर्ष के दिनों में मुझे सबसे ज्यादा मानसिक शांति और संबल रेडियो ने दिया और विविध भारती ने मुझे सकारात्मक सोच की ओर अग्रसर किया। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि जीवन में जब भी निराश और दुखी होती हूं तो मेरी बहन हमेशा मेरे साथ खड़ी होती है, वो बहुत ही आशावादी है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने अपने परिवार का धन्यवाद किया है, उन्होंने कहा कि बस धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, ईश्वर सब अच्छा करता है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि बचपन से डायरी लिखना शुरू किया था, जब पिताजी ने डायरी गिफ्ट की थी, ये मेरे कविता लेखन की शुरुआती दिन थे। आजकल लिखने का काम मोबाइल में हो जाता है लेकिन डायरी लिखना छूट गया है। अपनी कुछ अच्छी कविताएं और कुछ दूसरे कवियों की कविताएं मैं डायरी में दर्ज कर लेती हूं। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि क्रिकेट और अन्य खेलों में हैट्रिक होती है और सुरीला सफर कार्यक्रम में आप 2 दिन लगातार आ चुके हैं, तो क्या आप कल हैट्रिक करने वाले हैं? भाई ये एक सस्पेंस है और इसे सस्पेंस रहने दिया जाएगा, कल इसका फैसला हो जाएगा। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि इसे इत्तेफाक समझिए या क्या कि जब भी मन उदास होता है यूं लगता है कि शायद कोई बात सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है, तो विविध भारती और उसके सुरीला सफर कार्यक्रम में आने वाले गाने ये कहते हैं कि तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और अब ये गाना जज्बात से भरा, दिल को छू लेने वाला ये गाना, ये उदास गाना किस फिल्म का है ये गाना, ये बताइएगा।

एक श्रोता ये लिख रही हैं कि आज तो एक से बढ़कर एक गाने आपने सुनाए और गुजरा जमाना जैसे आंखों के आगे खड़ा हो गया और माँ बाबूजी की याद आ गई। एक और श्रोता है जो कहती हैं कि जिंदगी में जब भी निराश होता हूँ तो पिताजी की बात याद आ जाती है कि जीवन में आगे बढ़ना है तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, रुक गए तो जिंदगी नर्क से भी बदतर है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि जब मैं स्कूल में था तो डायरी में कानून की धाराएं लिखा करता था। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि गाना जिंदगी से जुड़ा हुआ है, जब पतिदेव दुनिया से चले गए तो पूरे समय बस यही गाना जिंदगी में गूंजा करता था। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने नरगिस और प्रदीप कुमार को याद किया है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि जिंदगी उतार चढ़ाव का दूसरा नाम है भरोसा। विश्वास वो चीज है जो परिवार को इकट्ठा रखती है। आज के इस कार्यक्रम में राजेंद्र कृष्ण के कुछ बेमिसाल गाने थे और अब तकरीबन आखिरी गाने की जब बारी आ गई है तो वही गाना जो हमारी इबारत की आखिरी लाइन था, ये गाना पेश किया जा रहा है। आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। आखिरी पेशकश

0: बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में साथ निभाने के लिए। सुरीला सफर कार्यक्रम के जरिए और विविध भारती के जरिए जिंदगी को सुरीला बनाते रहिए। दिन की इस भागदौड़ में जहां कहीं भी रहिए, विविध भारती के साथ रहिए। इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। फिर मिलते हैं, रहिए विविध भारती के संग।
1: न झटको जुल्फ से पान।

तरीकी सड़क टेढ़ी है देसी राग की ई, ई, ई, ई, ई, ई, चल मोड़ ले टम टम गले को गर्म कर ले गले को गर्म कर ले छोड़ अंग्रेजी में एक एटम अंग्रेजी में एक एटम अंग्रेजी में एक एटम

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू, वारिस और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
1: दिल तो पागल है,
0: दुश्मन
2: चिट्ठी न कोई संदेह,
0: गदर एक प्रेम कथा,
3: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की,
4: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पाव,
0: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ। 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
5: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
6: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

0: സഹേലി कार्यक्रम सखी सहेली में मंदाकिनी जोशी और
1: सोनाली पाठक का
0: प्यार भरा
1: नमस्कार
0: और सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है।
1: बताइए
0: क्या
1: अभी हम जब प्रोग्राम से पहले मिले तब आप कुछ ले रही थी, कुछ दवा थी या क्या थी, गले के लिए थी या किसी और चीज के लिए थे, मैं आपसे पूछना चाहूंगी।
0: अरे यानी कि तुम ध्यान रखती हो कि मैं क्या खा रही थी।
1: बिल्कुल, मेरा पूरी तरह आपकी तरफ ध्यान था।
0: अच्छी बात है, ध्यान रखना भी चाहिए। असल में क्या है सोनाली कि मौसम का बदलाव ना आपको परेशान कर देता है, जो आपके गले पे असर डालता है, आपके दिलो दिमाग पर असर डालता है और आपके स्वास्थ्य पर असर डालता है। तो मुझे लगता है कि मैं इन दिनों थोड़ा सा आयुर्वेद का सेवन करना पसंद कर रही हूँ।
1: आप इन दिनों कर रही हैं, मैं तो हमेशा से करती हूँ।
0: अच्छा, क्या लेती हो?

0: बहुत सारे ऐसे नुस्खे होते हैं जिन्हें खाने से ना उसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं और धीरे धीरे धीरे करके जो रोग है जो बीमारी है वो जड़ से निकल जाती है।
1: अरे वाह, तभी इतनी खूबसूरत और प्यारी सी लगती है और जो सुंदरता है तुम्हारी मुस्कुराहट की वो भी आयुर्वेद का ही परिणाम लगती है।
0: जी दिल से शुक्रिया। वैसे आज आयुर्वेद दिवस है तो उस पर हम जानकारी देंगे और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने कमेंट्स लिखना शुरू कर दिया है और कमेंट्स तो लिखे हैं श्रोताओं ने पर ये भी बताएं कि आपने आयुर्वेद को अपनाया है या नहीं और किस तरह से आप अपनाते हैं।
1: सबसे बड़ी बात यह है कि आयुर्वेद दिवस के बारे में तो हमारे श्रोता लिखेंगे ही, लेकिन आपने अपने जीवन में जैसे सोनाली ने आयुर्वेद को अपना रखा है
0: जी,
1: ऐसे अपनाया है कि नहीं ये जानना बेहद जरूरी है। ये बताइएगा कि आप अपने जीवन में आयुर्वेद का क्या उपयोग कर रहे हैं
0: जी।
1: ठीक है,
0: साथ ही आज एक और दिन है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस है।
1: अरे बहुत महत्वपूर्ण दिन,
0: बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। पुराने दिन याद आते हैं बचपन के, जब हम न्यूज देखते थे उसमें अब सांकेतिक भाषा में जो न्यूज हुआ करती थी वो हम भी सुना करते थे।
1: बिल्कुल, और उसे समझने की कोशिश भी करते थे। और पता है सोनाली, जब हम इस न्यूज को कई बार देखते थे ना तो हमें कुछ कुछ इशारे समझ आ जाते थे, है ना। और बचपन होता था तो शरारती होते थे, उन संकेतों को हम अपने घर पे भी दोहरा देते थे। जब हमारी मम्मी हमें आवाज देती थी तो हम उस संकेत से अपनी बात कहते थे।
0: कितना मजेदार वो
1: माहौल हुआ करता था, वो आज भी हमें याद है। बिल्कुल, और बताइए
0: साड़ियों का संसार, इसमें बाघ प्रिंट साड़ी मध्य प्रदेश की हम जानकारी देंगे। बहुत सारे हमारे साथियों ने, हमारी सखियों ने इस विषय पर भी लिखना शुरू कर दिया है और हम सखियों से पूछेंगे कि आपके पास है कि नहीं वो साड़ी, है ना,
1: या उससे जुड़ी कोई घटना याद हो कि आपने ये साड़ी ले तो ली किसी के कहने पर
0: जी,
1: लेकिन इस साड़ी को आप कहाँ कहाँ पहन के गई या क्या
0: कौन से कलर की है, आप
1: कैसी है और सामने वाले ने आपको उस साड़ी में देखा या आपकी सखियों ने देखा तो क्या कहा या आपके पति देव ने क्या कहा,
0: ये तो पता नहीं, बताएंगी या नहीं बताएंगी हमारी सखिया।
1: बताना चाहिए अगर आपके पति देव ने कहा कि तुम कितनी खूबसूरत हो, तो इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या होगा।
0: वही तो, और शब्द हमारा विचार आपके, आज का शब्द है आशा, जो हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। आशा का दामन हम जब थामे रहते हैं तो जिंदगी में हम आगे बढ़ते हैं।
1: बिल्कुल, तो अब हमारी श्रोताओं की आशा क्या है,
0: और नई व्यंजन भी है ना आज, लौकी के व्यंजन।
1: अच्छा, तो आप आज व्यंजन भी बनाने वाली हैं।
0: हाँ, और हमारे साथियों ने तो भर भर के लौकी के व्यंजन लिखकर भेज भी दिए हैं।
1: यहाँ पर मैं थोड़ा सा बचपने की ओर लौट रही हूँ।
0: क्यों?
1: लौकी मुझे पसंद नहीं है।
0: अरे पर लौकी का हलवा भी नहीं पसंद?
1: अच्छा, लौकी का हलवा भी बनता है?
0: हाँ, लौकी का हलवा, लौकी के लच्छे, लौकी का रायता, लौकी के कोफ्ते।
1: अरे वाह, हाँ? मुझे लगा आप लौकी की सब्जी बना के खिलाने वाली हैं।
0: और सब्जी भी उसमें चना दाल डाल दो, कुछ अलग स्टाइल से बना दो तो वो भी आपको पसंद आएगी।
1: तो चलिए हम अपने श्रोताओं को कहते हैं कि लौकी के क्या क्या व्यंजन बनाए जा सकते हैं बताइए ना, ताकि हम जैसे लोगों को जो लौकी को देखते ही नाक भौं सिकोड़ते हैं उन्हें लगे कि नहीं लौकी बहुत अच्छा।
0: और लौकी मेरी फेवरेट सब्जी है,
1: मुझे भी लौकी बहुत पसंद है जी। पर मैं थोड़ी देर के लिए आपके सामने बच्चा बन गई थी।
0: बच्चा बनना चाहिए ना।
1: हाँ, बच्चे करते हैं ना अक्सर घर में, क्या मम्मी लौकी की सब्जी बना दी,
0: मम्मियां क्या करती उसके पराठे बना के खिलाती है। पर बच्चों को लौकी जाना ही चाहिए, उनके
1: बिल्कुल
0: उन लौकी के बहुत फायदे हैं।
1: बिल्कुल, तो वो फायदे हमें बताएंगे हमारे श्रोता कि वो लौकी के क्या क्या व्यंजन बनाते हैं और ये भी बता सकते हैं कि अपने बच्चों को कितनी चालाकी से लौकी बनाकर खिला देते हैं, है ना।
0: और आप गाना सुनते हैं?
1: बिल्कुल।

0: मतलब तुम्हारी आंखें अभी बहुत कुछ कह रही हैं कि आयुर्वेद का सेवन करने के बाद तुम कितनी चमकदार हो गई हो।
1: वैसे आज है ने प्रतिवर्ष 23 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है। वर्ष 2026 में 11वां आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है और ये दिवस पंचांग के अनुसार धनतेरस यानी धनवंतरी जयंती के दिन मनाया जाता था, लेकिन तिथियों में हर साल होने वाले बदलाव के कारण भारत सरकार के आयुष मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने वर्ष 2025 से इसे हर साल 23 सितंबर यानी शरद विषु को मनाने का ऐतिहासिक और निश्चित फैसला किया ताकि इसे वैश्विक कैलेंडर पर एक स्थायी पहचान मिल सके।
0: बिल्कुल सही कहा। और इस वर्ष की मुख्य जो थीम है ना वो ये है कि स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद, और इसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा 2016 में की गई थी ताकि चिकित्सा की इस प्राचीन और समग्र पद्धति को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा दिया जा सके।
1: और इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में प्राकृतिक और आयुर्वेदिक जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ाना, बीमारियों से बचाव और दैनिक जीवन में संतुलन स्थापित करना है। आयुर्वेद भारत की प्राचीन चिकित्सा परंपरा है जिसका अर्थ है आयु का विज्ञान या जीवन का ज्ञान। आयुर्वेद केवल बीमारी होने पर उपचार करने की बात नहीं करता बल्कि स्वस्थ व्यक्ति को स्वास्थ्य को बनाए रखने और जीवन को संतुलित बनाने पर भी जोर देता है।
0: बिल्कुल सही कहा सोनाली। और आयुर्वेद जो है हमारी नियमित दिनचर्या, पर्याप्त नींद, संतुलित आहार और जो शारीरिक सक्रियता यानी एक्टिवनेस
1: जी
0: उसको बहुत महत्व देता है। दिनचर्या और ऋतुचर्या के माध्यम में से जो है बदलते मौसम के अनुसार अपनी जीवन शैली में उचित बदलाव करने की भी हमें इसी से सीख मिलती है।
1: और आयुर्वेद में भोजन को स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण आधार माना गया है। ताजा, संतुलित और व्यक्ति के आवश्यकता के अनुरूप भोजन पर जोर दिया जाता है। सही भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन की नींव भी माना जाता है।
0: और आयुर्वेद स्वास्थ्य को केवल शरीर तक सीमित नहीं रखता बल्कि हमारी मानसिक शांति का भी इलाज करता है। अच्छी नींद आती है और तनाव कम करने वाली आदतें और सकारात्मक जीवन शैली को भी वो बहुत महत्व देता है।
1: और आयुर्वेद हमें प्रकृति के करीब रहने की प्रेरणा देता है। मौसम, वातावरण और शरीर की आवश्यकताओं के बीच तालमेल बनाए रखना इसकी महत्वपूर्ण

0: अवधारणाओं में से एक है।
1: और आयुर्वेद में रोकथाम को विशेष महत्व दिया जाता है, यानी कि जो नियमित दिनचर्या है, उचित आहार है और स्वस्थ जो आदत है उसके माध्यम से हम अपने को स्वस्थ बना सकते हैं, ऐसा कहा जाता है।
0: और आयुर्वेद में रोकथाम को विशेष महत्व दिया जाता है ना, और साथ ही आयुर्वेदिक की कई बातें जैसे समय पर भोजन करना, पर्याप्त नींद लेना, स्वच्छता रखना, मौसम के अनुसार खान पान में बदलाव करना आज भी दैनिक जीवन में अपनाई जा सकती है।
1: हाँ, और आयुर्वेद जो है हमें संदेश भी देता है कि स्वास्थ्य केवल बीमारी का अभाव नहीं बल्कि शरीर, मन, आहार, दिनचर्या और प्रकृति के बीच संतुलन का नाम भी आयुर्वेद है। और आधुनिक जीवन की तेज रफ्तार में आयुर्वेद की स्वस्थ जीवन शैली जो है वो हमें दिनचर्या को अधिक संतुलित और जागरूक बनाने की प्रेरणा भी देती है।
0: और आज एक और खास दिन है, शरद विषु दिन है।
1: अच्छा,
0: यानी इस दिन जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है और उस वक्त दिन और रात लगभग बराबर होते हैं, 12-12 घंटे के होते हैं, इसलिए इस दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की
1: गई है। कितना गहराई से सोचा गया है इसके बारे में, और हमारे श्रोताओं ने भी काफी बातें लिखी हैं
0: जी,
1: है ना।
0: हमारे एक साथी कहते हैं कि आयुर्वेद दिवस हर साल 23 सितंबर के दिन मनाया जाता है, वही इस दिन से जुड़ी एक और बात कि मेरा जन्मदिन भी इसी दिन है, यानी 23 सितंबर के दिन आता है, मतलब आज ये दूरियां नजदीकियां बन गई है, अजब इत्तेफाक है। अगर दवाई की बात करें तो आज भी मैं ज्यादातर आयुर्वेदिक दवाई का इस्तेमाल कर रहा हूं। बचपन में जब सर्दी खांसी की तकलीफ हो जाती थी तब पिताजी मुझे वैद्यराज के पास अक्सर ले जाया करते थे। एलोपैथी के मुकाबले आयुर्वेदिक दवाई का असर धीरे धीरे होता है लेकिन दर्द को मूल से निकाल देने की क्षमता रखता है।
1: एक श्रोता लिखते हैं कि आयुर्वेद दिवस आज ही मैंने अश्वगंधा के बीज खरीद लिए हैं जो हमारे क्षेत्र में थोड़े दिनों में उगाने की कोशिश करेंगे, जिनके मूल में से जो दवाई बनती है वो ब्लड प्रेशर में इलाज करती है और आयुर्वेद की दवा काफी इन्हें सूट करती है। नीम के पत्तों को गर्म करके पानी, मतलब गर्म करके वो पानी ठंडा कर लेते हैं, नीम के पत्तों को पानी में उबाल लेते हैं, उसे ठंडा करके नहाते हैं तो खुजली कंट्रोल करने में फायदा रहता है।
0: यानी हर स्किन हो, फिर शरीर हो, आंखें हो, हर चीज के लिए आयुर्वेद के लिए दवा है। और घर में हमारे बहुत सारी चीजें तो घर में ही मौजूद होती है,
1: रसोई में कितनी सारी चीजें हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं
0: जी,
1: हाँ।
0: तो हमें अपनाना चाहिए आयुर्वेद को ताकि जो है रोग जो है पूरा मूल रूप से नष्ट हो जाए।
1: बिल्कुल सही कहा। और जो रसोई में बने मसाले हैं जिनसे हम सब्जी में डालते हैं या जिनको हम सब्जी में डालते हैं और उनका सेवन करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा उन्हें हमें सेवन में लाना चाहिए, बजाय इसके कि हम बाहर जाके चटपटे मसाले ढूंढते हैं अपने स्वाद को बढ़ाने के लिए। तो अगर हम इस तरह से आयुर्वेद का नियमित और संतुलित सेवन करते हैं तो बहुत सारी चीजों से, परेशानियों से हमें छुटकारा मिल सकता है ना।
0: जैसे बहुत जैसा कुछ लोग एकदम से ठंडा और गर्म खाते हैं, जैसे कुछ लोग जो है ना आइसक्रीम यानी गर्म गर्म गुलाब जामुन हो उसमें भी ठंडा ठंडा आइसक्रीम डाले तो इसे भी विरोधी माना जाता है आयुर्वेद में। तो छोटे छोटी बातें होती है उसे, हाँ एकाध बार ठीक है, साल में से एकाध बार किसी पार्टी में खाया पर हर बार वही आदत है। कुछ लोग जो होते हैं खाना खाते समय कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उससे भी हमारा ना हाजमा बिगड़ सकता है।
1: बिल्कुल बिगड़ता है। और हम सोचते थे जब छोटे थे कि खाना खाने के बाद तो आइसक्रीम खानी ही चाहिए, खाना पच जाता है, ऐसा हम बेवकूफ में कहा करते थे, कहा जाता था, लेकिन जब हम इसकी गहराई में गए तो पता चला कि वो हमारे शरीर के लिए कितना गलत करती है कि आपने गर्म गर्म भोजन किया और उसके बाद आप ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा ले रहे हैं। तो ये जो सर्द गर्म का बेमेल हम भोजन करते हैं वो हमारे शरीर को नुकसान ही पहुंचाता है। कभी कभार आपने कहा करना भी वैसे गलत है पर चलिए आपने कभी कभार आपकी बॉडी ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन हर बार बॉडी भी जो है रिएक्ट कर देती है ना।
0: और अब गीत सुन ले।
1: हाँ, नहीं तो हमारी श्रोता भी रिएक्ट कर देंगे।

0: तो सोनाली कुछ कहना चाह रही थी तुम कि हमारे श्रोता लगातार हमें संदेश भेज रहे हैं और काफी अच्छे संदेश भेज रहे हैं।
1: एक सांकेतिक भाषा दिवस पर एक हमारी सखी ने बहुत अच्छा संदेश लिखकर भेजा है। ये लिखती है कि सांकेतिक भाषा केवल हाथों की भाषा नहीं, दिलों को जोड़ने का माध्यम है। जहाँ शब्द साथ छोड़ देते हैं, वहाँ भावनाएं इशारों की भाषा में अपना रास्ता बना लेती है। ये भाषा हमें सिखाती है कि संवाद के लिए आवाज ही जरूरी नहीं, समझने वाला और महसूस करने वाली संवेदना भी जरूरी है। अतः हम केवल सांकेतिक भाषा को समझने की कोशिश ना करके बल्कि उन भावनाओं को भी समझे जो शब्दों के बिना कही जाती है, क्योंकि सच्चा संवाद आवाज से नहीं संवेदना से होता है।
0: क्या बात,
1: कितनी सुंदर, दिल को छू लेने की बात
0: अभिव्यक्ति दी है
1: जी।
0: और जब बात इशारों की कर रही थी ना, तो मुझे वो गाना याद आ रहा था, इशारों इशारों में दिल लेने वाले। बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ से? बहुत खूबसूरत हुनर है ये भाषा जो सांकेतिक भाषा के रूप में हमारे सामने आई है
1: जी।
0: कि इशारों में आप अपनी बात से मतलब अपनी बात समझा देते हैं और सामने वाला समझ भी जाता है। तो ये आज ही के दिन मनाया जाता है दिन भी, और ये दिन दुनिया भर में सांकेतिक भाषाओं के महत्व को और जो श्रवण बाधित समुदाय के जो भाषाई अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित किया गया है, उन लोगों के लिए जो थोड़ा सुनने में जिनको दिक्कत होती है।
1: सांकेतिक भाषा केवल हाथों के इशारों का माध्यम नहीं बल्कि भावनाओं, विचारों और ज्ञान और संवाद को व्यक्त करने वाली एक पूर्ण भाषा है। अलग अलग देशों में और क्षेत्रों में सांकेतिक भाषाओं के अपने व्याकरण और शब्दावली और अभिव्यक्ति के तरीके हो सकते हैं।
0: और इस दिन का मुख्य जो उद्देश्य है वो समाज में ये समझ विकसित करना है कि सुनने या बोलने में कठिनाई रखने वाले लोगों को भी समान अवसर, सम्मान और प्रभावी संवाद का पूरा अधिकार है
1: जी। और शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं और सार्वजनिक जीवन में सांकेतिक भाषा की उपलब्धता उनके लिए भागीदारी को अधिक सुगम बनाती है।
0: हाँ, और जो संवाद की कठिनाई जो व्यक्ति को समाज से अलग थलग महसूस करा सकती है, इसलिए सांकेतिक भाषा इस दूरी को कम करने का एक बात ही

0: महत्वपूर्ण माध्यम बनाया गया है
1: और ये बच्चों की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि श्रवण बाधित बच्चों को उनकी समझ के अनुरूप भाषा में शिक्षा मिले तो वे ज्ञान और कौशल को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, और सांकेतिक भाषा को केवल श्रवण बाधित समुदाय तक सीमित रखना भी उचित नहीं है सोनाली। यदि परिवार, शिक्षक, विद्यार्थी, स्वास्थ्यकर्मी और समाज के अन्य लोग इसके बुनियादी संकेत सीखें तो रोजमर्रा के संवाद में भी कई बाधाएं कम हो सकती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और स्कूलों और संस्थानों में सांकेतिक भाषा के प्रति जागरूकता के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। जहां शब्द आवाज नहीं बन पाते वहां संकेत संवाद का पुल बन जाते हैं।
0: और अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस हमें ये भी संदेश देती है कि जहां हर व्यक्ति को अपनी बात कहने और दूसरे की बात को समझने का अवसर मिले ऐसे दिन को बिल्कुल मनाया जाना चाहिए।
1: एक साथी ने भी हमारे लिखा है कि किसी के लिए हाथों की हल्की सी मुद्रा सिर्फ इशारा हो सकती है, लेकिन जो सुन नहीं सकते उनके लिए वे इशारे नहीं बल्कि शब्द, वाक्य, संवाद और संवेदनाएं हैं। सांकेतिक भाषा ने कई लोगों को सिर्फ अपनी बात कहने का माध्यम नहीं दिया बल्कि उन्हें शिक्षा, रोजगार और दूसरों की जिंदगी बदलने की ताकत भी दी है।
0: बहुत सुंदर। और अब सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।
1: सुनते हैं।

0: आपका जब साथ मिलता है ना तो मेरा भी यही हाल होता है
1: कि हमें हो करना पड़ता है
0: जी। हमारे एक साथी ने लिखा है, मेरे योग गुरु आयुर्वेद के बहुत अच्छे ज्ञाता है, वे कहते हैं कि आपकी रसोई भी एक आयुर्वेदिक प्रयोगशाला है, तमाम मसालों में

0: कुछ ना कुछ आयुर्वेदिक गुण होते हैं। हल्दी, धनिया, नमक, गरम मसाले, सरसों का तेल, देसी घी आदि में बहुत आयुर्वेदिक गुण होते हैं। तो वहीं एक साथी कहते हैं कि मुझे चाय पीने का बहुत शौक है, तो मेरे घर पर सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी चाय को आयुर्वेदिक बना देती है। चाय में तुलसी के पत्ते, लौंग, गिलोय, अदरक, इलायची, दालचीनी पीस कर बनाती है। चाय की चाय और आयुर्वेदिक फायदे भी होते हैं।
1: बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है कि आप आयुर्वेद को इस रूप में अपना
0: हैं। और सर्दियों के मौसम में या फिर गले में कुछ खराश हो तब तो इस तरह की चाय जो होती है ना रामबाण हो जाती है हमारे लिए।
1: बिल्कुल सही कहा। और ध्यान होगा सोनाली तुम्हें कि बचपन में हमारी जो माँ है हमें जब जैसी खांसी होती थी या कफ होता था तो अदरक कूट के शहद के साथ काली मिर्च मिला के ना चम्मच से चटा देती थी।
0: साथ ही हल्दी का दूध
1: पिला देती थी। तो इस तरह से कितने ही मसाले हमारी रसोई में मिलते हैं।
0: और जो आजकल के बच्चे ना नाक भौं सिकोड़ते हैं कि हम घी नहीं खाएंगे, भले ही वो बटर खाएंगे या फिर बाहर का जो मेयोनीज वगैरह वो खाते हैं और जो केक में जो क्रीम होती है वो खाते हैं, पर घी खाने के नाम से कतराते हैं। पर देसी घी जो है वो बहुत जरूरी है हमारी त्वचा के लिए, आंखों के लिए, जोड़ों के लिए बहुत जरूरी है। तो हमारी दादी माँ, नानी माँ या हमारी माँ जो हमें खिलाती थी वो खाना बहुत हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और वही जो हमें एक इस तरह का शौक हुआ है कि हम खूबसूरत दिखें, सिर्फ खूबसूरत दिखें है ना, या दुबले पतले इस तरह का जो आजकल एक मार्केट चलन आ गया है उसके पीछे भाग रहे हैं। दुबला होना बहुत अच्छी बात है, स्वस्थ रहना उससे भी अच्छी बात है, और खूबसूरत दिखना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे अच्छा खानपान छोड़ देना ये सबसे बड़ी मूर्खता है।
0: और अगर अच्छा खानपान रखेंगे ना तो हम दिखेंगे ही सुंदर। तन से भले ही ना दिखे पर मन से तो हम जरूर दिखते हैं।
1: और तन से भी दिखेंगे, क्यों ना दिखेंगे, जब आप अच्छा भोजन लेंगे तो शरीर
0: होंगे, त्वचा अच्छी होगी,
1: रिएक्शन अच्छा ही होगा। और अब एक अंतराल ले लेते हैं।
0: बिल्कुल।

0: इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है।
1: कार्यक्रम है सखी सहेली,
0: और आज सखी सहेलियां कौन है?
1: मंदाकिनी जी
0: और सोनाली जी। तो चलिए साड़ी की दुनिया में चलते हैं, जहां आप मुझे एक साड़ी गिफ्ट करने वाली हैं।
1: हाँ बिल्कुल है मेरे पास में, और आपके लिए मैं लेकर आऊंगी।
0: बाग प्रिंट साड़ी?
1: हाँ।
0: क्या बात है,
1: मध्य प्रदेश की ये सुंदर साड़ी है, बाग प्रिंट साड़ी। और भारत की पारंपरिक साड़ियों की दुनिया में बाग प्रिंट अपनी अनूठी ब्लॉक प्रिंटिंग, प्राकृतिक रंगों और पारंपरिक डिजाइनों के कारण विशेष स्थान रखता है। और ये कला जो है मध्य प्रदेश के धार जिले के बाघ कस्बे से जुड़ी हुई है। पीढ़ियों से कारीगर इस कला को हाथों की मेहनत और बारीकी से आगे बढ़ाते हुए आए हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, और बाघ प्रिंट का नाम मध्य प्रदेश के बाघ कस्बे से जुड़ा है, जैसा अभी आपने बताया भी। और ये जो क्षेत्र है अपनी पारंपरिक कपड़ा छपाई कला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध भी है। और ये भी माना जाता है सोनाली कि इस कला पर राजस्थान और गुजरात की पारंपरिक ब्लॉक प्रिंटिंग परंपराओं का भी प्रभाव पड़ा है।
1: और समय के साथ स्थानीय कारीगरों ने अपनी विशिष्ट शैली विकसित की है। और इस कला की सबसे बड़ी विशेषता है कि आधुनिक मशीनों की जगह हाथ से तैयार किए गए लकड़ी के ब्लॉक और पारंपरिक रंगाई छपाई की प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता है।
0: हाँ बिल्कुल, और बाघ प्रिंट की साड़ी तैयार करना केवल कपड़े पर ब्लॉक लगाने का काम भर नहीं है, बल्कि इसमें कई चरण शामिल होते हैं। जैसे कपड़े की तैयारी क्या होती है, सबसे पहले सूती या रेशमी कपड़े को अच्छी तरह धोकर और साफ करके छपाई के लिए तैयार किया जाता है।

0: और इससे कपड़े पर रंग अच्छी तरह बैठ जाता है।
1: और कारीगर शीशम या अन्य उपयुक्त लकड़ी पर पारंपरिक डिजाइन उकेर कर ब्लॉक तैयार करते हैं। प्रत्येक ब्लॉक का डिजाइन अलग हो सकता है।
0: हाँ, और परंपरागत जो बाग प्रिंट में प्राकृतिक रंगों का जो है वो विशेष महत्व माना गया है। लाल और काले रंग इसकी पहचान माने जाते हैं। रंगों को तैयार करने और कपड़े पर स्थायी रूप से बैठाने के लिए पारंपरिक प्रक्रियाओं का भी पालन किया जाता है।
1: और कारीगर रंग लगे लकड़ी के ब्लॉक को कपड़े पर सावधानी से दबाता है। एक छोटी सी गलती भी पूरे पैटर्न को प्रभावित कर सकती है, इसलिए इसमें अनुभव और हाथ की सटीकता बहुत महत्वपूर्ण होती है।
0: सोचिए, थोड़ा सा भी आपने कम या ज्यादा दबा दिया सोनाली उस ब्लॉक को, तो सारा जो डिजाइन है वो फैल जाएगा, कलर जो है वो फैल जाएंगे। और छपाई के बाद कपड़े को पारंपरिक तरीके से धोया जाता है। कई चरणों से जब वो निकल जाता है तो रंगों में गहराई और चमक आती है।
1: और पारंपरिक रूप में इसमें काला, लाल और सफेद रंगों का प्रयोग किया जाता है। लाल रंग साड़ी को जीवंतता देता है और काला रंग डिजाइन को उभारता है, और सफेद या हल्का रंग पूरे पैटर्न को संतुलित करता है।
0: और आज के समय की अगर हम बात करें तो बाग प्रिंट नए रंगों से भी बनाए जाते हैं। जो लोग लाल काले से परहेज रखते हैं उनके लिए भी नए कलर्स हैं, जिससे ये पारंपरिक होने के साथ साथ आधुनिक भी लगती है और बहुत ही आकर्षक भी लगती है साड़ी।
1: और इसके प्रिंट देखे तो इसमें फूल और पत्तियां, बेल बूटे, ज्यामितीय आकृतियां और पारंपरिक भारतीय अलंकरण का भी इसमें जो चित्र बनाए जाते हैं।
0: और
1: इन डिजाइनों की खूबसूरती यह है कि वे बहुत अधिक चमक दमक के बिना भी साड़ी को आकर्षक बना देते हैं।
0: हाँ, हर साड़ी थोड़ी अलग हाथ से बनने के कारण प्रिंट में हल्का सा अंतर दिखाई देता है, लेकिन ये इसकी खूबसूरती का हिस्सा है। और बदलते फैशन के साथ बाग प्रिंट का प्रयोग सिर्फ साड़ियों तक सीमित नहीं है, बल्कि दुपट्टों में, कुर्तों में, स्टोल, शर्ट, स्कर्ट और अन्य परिधान भी इससे बनाए जाने लगे हैं।
1: और फैशन डिजाइनरों ने पारंपरिक बाग प्रिंट को आधुनिक और नए रंगों के साथ प्रस्तुत किया है। इससे युवा पीढ़ी में भी इस हस्तकला के प्रति रुचि बढ़ी है।
0: हाँ?
1: और बाग प्रिंट केवल कपड़े पर की जाने वाली छपाई नहीं, बल्कि अनेक कारीगर परिवारों की आजीविका और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी कला है। इसे जीवित रखना स्थानीय कारीगरों के कौशल को सम्मान देना भी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये वहाँ की जो है आर्थिक उसको
1: मदद
0: करता है, अर्थ का अर्थ प्रधान उस पर भी काम करता है। जब हम हाथ से बनी ऐसी साड़ी खरीदते हैं जो हमें केवल वस्त्र नहीं खरीदते बल्कि उसके पीछे छिपे कारीगर के श्रम को देखते हैं, समय को देखते हैं, तो हम उनको सम्मान भी देते हैं उनके अनुभवों को।
1: जी, और बाग प्रिंट साड़ी में मध्य प्रदेश की मिट्टी की खुशबू, कारीगरों की उंगलियों की कला और भारतीय परंपरा की सुंदर छाप दिखाई देती है। लकड़ी के ब्लॉक से कपड़े पर उभरते फूल पत्ते केवल डिजाइन नहीं होते, वे हमारी लोक कला और सांस्कृतिक विरासत की कहानी भी कहते हैं।
0: और इसीलिए बाग प्रिंट साड़ी को पहनना मानव परंपरा को अपने आंचल में सहेजना है। एक ऐसी परंपरा जिसमें प्रकृति के रंग, कारीगरों की मेहनत और भारतीय हस्तकला की आत्मा तीनों एक साथ दिखाई देते हैं।

0: तो इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना। तो हमारी सखियों ने क्या लिखा कि साड़ी को पहनने के बाद उन्हें क्या कहा किसी ने?
1: उन्होंने कहा कि बहुत सुंदर लगती हो। एक सखी ने लिखा है कि मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ और रहने वाली एक मेरी सहेली भोपाल से बाग प्रिंट के सूट और साड़ियाँ लाकर बेचती है। मैंने भी कई सूट लिए और साड़ी अभी तक नहीं ली है। तो भाई साड़ी भी ले लीजिए, बहुत सुंदर साड़ी होती है।
0: हाँ, इसको मन में मत रखिए और फिर बताइए कि उस साड़ी को पहनने के बाद लोगों ने आपसे क्या कहा। वहीं एक श्रोता लिखती है कि मैं बाग प्रिंट की साड़ियों के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि मैं अभी MP से हूँ और मेरे पास प्रिंट की साड़ियां हैं और सूट्स, बेडशीट्स, हर चीज है और मुझे पसंद भी है क्योंकि मेरे घर में बहुत सा कलेक्शन आपको मिलेगा। तो इनके घर चले
1: चले और ले लेते हैं,
0: वही ना। और मेरी एक फ्रेंड है जिसने बाग मंच करके एक अपना शॉप खुला हुआ है, उसके पास अगर आप जाएंगी तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या लूं क्या छोड़ूं। ऐसा लगेगा हर चीज आपकी पसंद की है। इतना कंफर्टेबल फैब्रिक होता है कि एक बार आप पहनेंगी तो कभी उसे छोड़ ही नहीं पाएंगी।
1: वही एक सखी ने लिखा है कि बाग प्रिंट कला का इतिहास सदियों पुराना माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस कला को खत्री समुदाय के शिल्पकारों द्वारा लगभग 400 वर्ष पहले शुरू किया गया था, जो सिंध से आकर बाघ नदी के किनारे बस गए। इस नदी के पानी में पाए जाने वाले विशेष खनिजों के कारण इन साड़ियों के रंगों में एक अनोखी चमक और पक्कापन आता है।
0: बिल्कुल सही कहा सोनाली, और मुझे तो अब आशा ही नहीं विश्वास भी है कि हम भी जल्द ही बाघ प्रिंट की साड़ी खरीदने वाले हैं या तुम मुझे गिफ्ट देने वाली हो।
1: बिल्कुल, मुझे भी आशा है कि ये साड़ी बिल्कुल मैं खरीद लूंगी और पूरा विश्वास है कि आप तक पहुंच जाएगी।
0: अरे वाह, तभी तो कहते हैं कि दुनिया आशा और विश्वास पर ही टिकी है। हमारे एक श्रोता लिखते भी है कि आशा एक छोटा सा शब्द है लेकिन अपने अंदर पूरी दुनिया समेटे हुए है। जब परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं, रास्ते धुंधले पड़ जाते हैं और मन थकने लगता है, तब यही आशा भीतर से कहती है अभी सब खत्म नहीं हुआ, एक नई सुबह बाकी है। आशा वो रोशनी है जो अंधेरे में भी रास्ता तलाश लेती है और यह हमें इंतजार करना सिखाती है, प्रयास करते रहने का हौसला देती है और टूटते हुए मन को फिर से संभाल लेने का भी एक माध्यम है आशा।
1: आशा हमारे विचारों की वो रोशनी है जो कठिन परिस्थितियों में भी हमें आगे बढ़ने का साहस देती है। जब रास्ते कठिन लगने लगते हैं तब आशा हमें विश्वास दिलाती है कि परिस्थितियां बदल सकती है और आने वाला कल बेहतर हो सकता है। सकारात्मक विचारों से जुड़ी आशा मन में उत्साह, धैर्य और आत्मविश्वास पैदा करती है। इसलिए जीवन में कितनी भी चुनौतियां आए हमें आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आशा ही नए सपनों और नई शुरुआत की पहली किरण है।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि आशा का सामान्य अर्थ उम्मीद, भरोसा या किसी अच्छी बात की पूरी होने की इच्छा है। किसी काम की पूरी होने की संभावना पर विश्वास रखना, भविष्य में कुछ अच्छा होने की चाह रखना, ये मन की भावना है और जिंदगी में उम्मीद के साथ जिंदगी जीने की चाहत बढ़ाती है। आशा दिल है छोटा सा और छोटी सी आशा।
1: एक हमारे साथी कहते हैं, आशा है तो जीवन में उजाला है, आशा है तो हर मुश्किल का रास्ता है। आशा केवल एक विचार नहीं बल्कि विषम परिस्थितियों में मुस्काने और आगे बढ़ने की अदम्य इच्छा शक्ति है। निराशा चाहे कितनी भी गहरी हो, आशा की एक किरण निराशा के पूरे पर्वत को पिघलाने का सामर्थ्य रखती है। जब मेहनत और धैर्य थकने लगते हैं तब आशा ही हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाने का हौसला देती है।
0: बिल्कुल सही कहा। और क्या के लिखते हैं हमारे श्रोता?
1: आशा उस विश्वास का नाम है जो टूटते हुए मन को फिर से संभाल लेता है। कभी किसी अपने के दो शब्द से मिलती है, कभी किसी अनजान की मुस्कान में, तो कभी अकेलेपन में स्वयं से की गई बातचीत हमें आशा सिखाती है कि ठहराव अंत नहीं होता, कभी कभी यही ठहराव किसी नए सफर की तैयारी होता है।
0: ये तो बिल्कुल सही कहा इन्होंने। कई बार हम ठहर जाते हैं ना जिंदगी में तो हम उदास हो जाते हैं, अरे जिंदगी तो हमारी बोरियत हो गई, उबाऊ हो गई, जिंदगी तो यही ठहर गई, लेकिन ये नहीं पता होता कि अगले ही पल हम नए सफर की ओर निकल भी सकते हैं, है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ खुशहाल होंगे। आशा उम्मीद की एक ऐसी किरण है जो निराशा का तमस यानी अंधकार चुटकियों में गायब कर सकती है। जैसे विविध भारती तुम आशा विश्वास हमारे, हम धरती तुम आकाश की प्रसारण तरंगे, जो सदा साथ रहती हैं हमारे, जब तक सांस है तब तक आस है।
1: क्या बात है। एक साथी कहते हैं कि वास्तविक आशा केवल निष्क्रिय इच्छा नहीं बल्कि संघर्ष से जन्म लेती है। जब हमारा धैर्य और हमारी क्षमताएं कठिन दौर से गुजरती है तब आगे बढ़ने की ललक ही आशा कहलाती है। जिस प्रकार शरीर को जीवित रखने के लिए श्वास यानी सांस जरूरी है, ठीक उसी प्रकार मन को जीवंत रखने के लिए आशा अनिवार्य है। आशावादी व्यक्ति कभी हार नहीं मानता, वह हर असफलता को नई शुरुआत का अवसर मानता है। इसलिए अपनी उम्मीदों को कभी टूटने ना दें, क्योंकि एक बेहतर कल की शुरुआत हमें आज की उम्मीद से होती है।
0: और अब हमारे श्रोताओं को आशा है कि हम एक गीत उनको सुनवाएंगे।

0: हमारी भी छोटी सी आशा यही है सोनाली कि आज लौकी के जो व्यंजन है वो बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं।
1: एक सखी ने लिखा है कि हमारे प्रांत में लौकी सात्विक भोजन में आता है, छठ पूजा के पहले दिन इसे खाया जाता है। इसकी सब्जी, इसकी पकौड़ी, लौकी को घिसकर गेहूं के आटे में मिलाकर इसके पराठे बनते हैं, घिसकर इसके कोफ्ते बनाए जाते हैं, बड़े टुकड़ों में काटकर उबालकर इंस्टेंट अचार भी तैयार होते हैं। कार्तिक मास की एकादशी में इसका हलवा और खीर बनाकर श्री विष्णु भगवान को भोग लगाया जाता है।
0: क्या बात है, यानी लौकी इतनी स्वादिष्ट भी होती है और महत्वपूर्ण भी होती है। एक ही लौकी की थाली पीठ बनाने की विधि बताइए। बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक नाश्ता है। इसे बनाने के लिए कद्दूकस की हुई लौकी, गेहूं का आटा, बेसन, ज्वार का आटा, कटा प्याज, मिर्च, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट, बड़ा चम्मच सफेद तिल और अजवाइन जीरा, छोटा चम्मच और हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, ये सभी नमक स्वादानुसार चाहिए, हींग चाहिए, कटा हुआ धनिया, तेल या घी सेकने के लिए। एक बड़े कटोरे में कद्दू की हुई लौकी ले, लौकी का पानी नहीं निचोड़ना क्योंकि इसे पानी से आटा गूंदा जाएगा। इसमें सभी सामग्री मिलाकर नरम आटे जैसा गूंद लें। इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख दें। एक साफ सूती कपड़े को गीला करके चकले पर फैलाएं। आटे की एक लोई लें और उंगलियों में थोड़ा सा पानी लगाकर कपड़े पर थाली पीठ को गोलाकार में फैलाएं। बीच में अपनी उंगली में 3-4 छोटे छेद कर दें। अब तवा गर्म करें और उस पर थोड़ा सा तेल लगाएं। कपड़े वाले थालीपीठ को कपड़े सहित तवे पर उल्टा पलट लें और धीरे से कपड़े को हटा लें। इसे दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लें और दही और हरी चटनी के साथ इसे खा सकते हैं।
1: अब थालीपीठ आपने बनाना सिखाया है तो मैं लौकी का रायता बनाना बताऊंगी।
0: अरे,
1: एक सखी ने हमारे लिखकर भेजा है, लौकी का रायता बहुत ही स्वादिष्ट और ठंडक देने वाली डिश है जिसे आप सिर्फ 20 मिनट में बना सकते हैं। 250 ग्राम लौकी को छीलकर कद्दूकस कर लें। ताजा दही 2 कप फेटा हुआ, भुना जीरा, 1 छोटा चम्मच काला नमक, 1/2 छोटा चम्मच सादा नमक, स्वादानुसार हरी मिर्च, 1-2 कटी बारी और धनिया बारीक कटा हुआ। तड़के के लिए तेल या घी, जीरा, हींग, राई। बनाने की विधि, कद्दूकस की हुई लौकी में थोड़ा सा पानी डालकर बर्तन या कुकर में नरम होने तक उबाल ले। उबली हुई लौकी का अतिरिक्त पानी निचोड़ ले और पूरी तरह से ठंडा होने दे। एक बाउल में ताजा दही ले, उसमें फेंट ले। फेंटे हुए दही में उबली हुई लौकी, हरी मिर्च, भुना जीरा पाउडर, काला नमक और सादा नमक डालकर अच्छी तरह मिलाए और एक छोटे पैन में तेल घी गर्म करके उसमें तड़का लगाए और उसके ऊपर रायते के ऊपर डाल दे और ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया डालकर ठंडा ठंडा परोसे।
0: क्या बात है, और इसके साथ ही मैं आपको लौकी का स्वादिष्ट हलवा भी खिलाऊंगी सोनाली, है ना। ये कहते हैं कि कद्दूकस कर लें लौकी को, दूध और घी के साथ इसे पकाया जाता है। लौकी ले लें, देसी घी ले लें, दूध ले लें, चीनी ले लें, मावा ले लें, ड्राई फ्रूट चाहिए, इलायची पाउडर है, फूड कलर है, आपको अगर चाहिए तो कम मात्रा में लें थोड़ा सा। और लौकी को तैयार करने के लिए सबसे पहले उसको धोकर छील लें। छीलने के बाद चक्कर जरूर देख लें, कड़वी तो नहीं है,
1: बहुत जरूरी है,
0: कड़वा हलवा खा रहे हैं हम। अब लौकी को मोटे कद्दूकस से, महीन नहीं, मोटे कद्दूकस से कद्दूकस कर ले। कद्दूकस तभी करें जब हलवा बनाना हो, वरना लौकी काली पड़ सकती है। हाथों हाथ करना है। लौकी को भूने एक भारी तले की कढ़ाई में 1-2 चम्मच देसी घी गरम करें। इसमें कद्दूकस की भी लौकी डालें और मध्यम आंच पर पकाएं 5-7 मिनट तक। इसका पानी सूख जाना चाहिए, दूध डालकर पकाएं। भुनी हुई लौकी में गर्म दूध मिलाएं, इसे मध्यम तेज आंच पर पका लें। जब तक दूध पूरी तरह सूख नहीं जाए, लौकी अच्छी तरह गल नहीं जाए, बीच बीच में चलाते रहें, हलवा नीचे नहीं लगना चाहिए। चीनी, फूड कलर और मावा मिलाएं। जब दूध सूख जाए तब इसमें चीनी और मावा डाल दें। चीनी डालने के बाद मिश्रण थोड़ा सा पानी छोड़ेगा, इसलिए इसे गाढ़ा होने तक फिर से थोड़ी देर पकाएं। ड्राई फ्रूट्स डालें, इलायची डालें, अंत में घी में हल्के हुए तले हुए ड्राई फ्रूट्स डाल दें और स्वादिष्ट और रसीली लौकी का हलवा आपको तैयार मिलेगा। इसे घी से ग्रीसिंग की हुई थाली में डालकर चाकू से काटकर चौरस टुकड़ों में कर लें ताकि वो चक्की का आकार दे दे और गर्मा गर्म परोसे। स्टोर करने के लिए आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं और ठंडा भी खा सकते हैं।
1: और इसी तरह एक साथी ने इसी तरह जैसा हलवा बनाया वैसे ही खीर बनाने की भी रेसिपी लिखकर भेजी कि जैसे हलवे को हम बहुत ज्यादा सुखा लेते हैं तो उसको ज्यादा सुखाए नहीं तो उसकी खीर बन सकती है।
0: यहाँ पर ये हो सकता है कि लौकी को थोड़ा महीन कद्दूकस से कसले है ना, ताकि लौकी खीर में कन्वर्ट हो जाए, है ना।
1: और जो हमने जो आपने हलवा की रेसिपी बताई उसे और ज्यादा सुखा लिया तो उसकी बर्फी भी बहुत अच्छी बनती है।
0: कई बार क्या होता है, माएं इडली बनाती है ना, उसमें भी लौकी डाल देती है ताकि बच्चों को
1: सांभर में
0: भी है। और जब इडली हम पकाते हैं ना तो कद्दूकस की भी लौकी उसके अंदर भर देती है, ताकि जो इडली भी खाई जाएगी और लौकी भी में पहुंच जाएगी बच्चों के। ये चालाकियां माँ को करनी पड़ती है।
1: पराठे बनाती है, पकौड़ी बनाती है और ना जाने कितने कितने तरीके से दलिया में डाल देगी, खिचड़ी में डाल देगी, सांभर में डाल देगी, पर बच्चे को लौकी खिला कर ही छोड़ती है।
0: हाँ, इसलिए लौकी एक और उसके रूप अनेक है ना।
1: और अब गाना
0: बिल्कुल

0: तो सोनाली, हमारे श्रोता तो हमसे खींचे हुए नहीं है,
1: और अगर कोई लौकी का हलवा लौकी के व्यंजन खिला देंगे तो कोई कैसे खींचेगा।
0: वही तो हमने कहा, वो खींचे हुए नहीं है। लेकिन हाँ, उन्हें ये पता है कि अब जो है हम आगे और उनके साथ गुफ्तगू नहीं कर सकते हैं। तो कार्यक्रम सखी सहेली से मंदाकिनी जोशी और
1: सोनाली पाठक का
0: प्यार भरा
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ। जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
1: पेंटर बाबू
0: वारिस, और फिर संगीत

0: गदर एक प्रेम कथा।
1: मैं निकला ओ गड्डी लेके
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की
1: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा
0: एक उत्तम जीवन की कहानी उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे